0: மை ரேடியோ 90 FM கேட்டறிஞர் கோட்டுக்கூடா.
1: वो नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली, वो बेवफा चलावती, लावती, लावती।